0: A multiple deputy chief minister formula is likely, with Siddharamaiah loyalists expected to get key portfolios. Well, sources also say that Siddharamaiah has called ministers for a breakfast meeting tomorrow when he could resign as a chief minister. He and D.K. Shivkumar are expected to make a joint appearance in Bengaluru later today.
1: सर इस अगले हफ्ते बताया जा रहा है सिद्धरमैया स्टेप डाउन कर देंगे सर क्या कोई आश्वासन कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से आपको दिया गया है आज
2: सिद्धरमैया जी
3: आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन सर आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन
2: आर यू गोइंग टू रिजाइन सर
3: सर
2: सर हैव पार्टी लीडरशिप टोल्ड यू टू रिजाइन सर सर हैव पार्टी आस्क्ड यू टू रिजाइन
3: टू स्टेप डाउन सर सिद्धा सर
2: सिद्धरमैया जी
3: गोइंग टू स्टेप डाउन सर
4: कब तक चलेगा कुर्सी झगड़ा वो बंद करो जनता ने आपको पावर में बिठाया झगड़ा करने के लिए नहीं है जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पावर में बिठाया है आप क्या कर रहा है झगड़ा कर रहा है जनता का कष्ट को सुनने वाला कौन है ही नहीं विधानसभा में कोई है ही क्या कोई मंत्री है ही नहीं सब लोग दिल्ली में है दिल्ली आपको पावर दिया नहीं कर्नाटक की जनता आपको पावर दिया है आपको सत्ता में बिठाया जनता ने आप जनता को छोड़ करके दिल्ली में गया है वही जनता आपको पावर से हटा देंगे कौन आपको सत्ता में बिठाया वो लोग सत्ता के खींचने का ताकत भी जनता के पास है किसके वजह से सत्ता में बिठाया आपने कहा कर्नाटक का सरकार में 40% करप्शन है हम लोग बिना करप्शन काम करेंगे क्या किया पावर में आने के बाद 60% तक पहुंच गया बढ़ाया करप्शन को
0: Well, the Karnataka Game of Thrones isn't over yet. In fact, the political buzz is only growing louder. After nearly 6 months of meetings in Delhi involving Siddharamaiah and Deputy D.K. Shivkumar, Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, the party publicly insisted that only Rajya Sabha and Legislative Council elections were discussed. But behind the scenes, sources even suggest that there is a power transition that is now likely in Karnataka. Take a look at the special report that breaks down the latest.
5: At this point, we will not be taking any questions.
6: It began with an unusual instruction. Congress leader K.C. Venugopal took center stage at Delhi's Indira Bhavan, flanked by Karnataka Chief Minister Siddharamaiah and Deputy CM D.K. Shivakumar. Beside them stood Karnataka in charge Randeep Surjewala, who made an appeal to the media.
5: I also request you to, for heaven's sake, now stop your speculation.
6: Everyone around burst into laughter, but the tension was unmistakable. K.C. Venugopal then made the Congress position official.
7: Today, entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all.
6: And then, without taking a single question, the Congress leaders walked away. But the denial only intensified the speculation. On Tuesday morning, Siddharamaiah met loyalists over breakfast at Karnataka Bhavan. Again, Shivakumar was missing. The political messaging was hard to ignore. Only days ago, posters calling D.K. Shivakumar the next chief minister surfaced during his birthday celebrations. Supporters openly pushed for a leadership transition.
8: ಎಲ್ಲ ಹೈ ಕಮಾಂಡರ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾನು ನಂಬಿರೋದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೆಲುವು ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ
9: ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ sent his resignation or he has expressly told the AICC president about his position.
6: At the heart of the crisis lies an old Congress

0: Let's now take you through the top story coming in at this hour from Karnataka. After weeks of suspense, Karnataka's power transition appears to be entering the endgame. Sources tell NDTV that Siddaramaiah could step down as the chief minister within the next couple of days. In a 35-minute meeting with Rahul Gandhi yesterday, Siddaramaiah was reportedly told that any decisions must factor in the 2028 state polls and the 2029 Lok Sabha elections. Sources say that the new government could take shape within a week if the transition goes as planned. A multiple deputy chief minister formula is likely, with Siddaramaiah loyalists expected to get key portfolios. Well, sources also say that Siddaramaiah has called ministers for a breakfast meeting tomorrow when he could resign as the chief minister. He and D.K. Shivkumar are expected to make a joint appearance in Bengaluru later today.
1: सर सिद्धरमैया साहब को स्टेप डाउन करने के लिए बोल दिया सर इस अगले हफ्ते बताया जा रहा है सिद्धरमैया स्टेप डाउन कर देंगे सर क्या कोई आश्वासन कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से आपको दिया गया है आज
2: सिद्धरमैया जी
3: आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन सर आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन
2: आर यू गोइंग टू रिजाइन सर
3: सर
2: सर सर पार्टी लीडरशिप टोल्ड यू टू रिजाइन सर सर है पार्टी
3: आस्क्ड यू टू रिजाइन गोइंग टू स्टेप डाउन सर
2: सिद्धरमैया जी
3: गोइंग टू स्टेप डाउन सर
2: चलो सर सर आर यू रिजाइनिंग सर
4: कब तक चलेगा कुर्सी झगड़ा वो बंद करो जनता ने आपको पावर में बिठाया झगड़ा करने के लिए नहीं है जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पावर में बिठाया है आप क्या कर रहा है झगड़ा कर रहा है जनता का कष्ट को सुनने वाला कौन है ही नहीं विधानसभा में कोई कोई है ही क्या कोई मंत्री है ही नहीं सब लोग दिल्ली में है दिल्ली आपको पावर दिया नहीं कर्नाटक की जनता आपको पावर दिया है आपको सत्ता में बिठाया जनता ने आप जनता को छोड़ करके दिल्ली में गया है वही जनता आपको पावर से हटा देंगे कौन आपको सत्ता में

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर
1: सो मेनी अटैक्स
0: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज
1: इट्स इनक्रेडिबल
0: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: INS Vikrant.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आतुर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पुराने सारी दर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया
2: back, well, the CBI

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: We have breaking news coming out of Pune, and this is in regard to the Porsche car accident that took place in Pune. The accused family, this is the Agarwal family, apparently threw a party after being released from jail. This is a video of them dancing that you see on your screens with garlands of currency notes around their necks that went completely viral. The Agarwal family, one of the main accused in the highly controversial Pune Porsche car accident case, is once again embroiled in a controversy with Vishal Agarwal, the father of the man who was behind the wheel of that Porsche car, was released on bail just a month ago, and he was seen celebrating with his wife at this very lavish party, a video of which is making the rounds on social media. We have my colleague Anuj Raite joining us from Mumbai in order to get us the very latest. Anuj, appalling at that, you know, because this is a case that had got a lot of traction. And here we see the father who, upon receiving bail, has gone ahead and had a party. He's, you know, you can see him hosting that party, participating, you know, in this very vulgar act with those currency notes around his neck and whatnot. Talk us through the details.
2: There are a couple of things for us to understand. Firstly, while this video has been making rounds on social media, we are not completely sure of fact whether this video was shot after the individual, that is Vishal Agarwal, the father of the accused in this case, was involved in this video after getting the bail. Because we know that he recently got bail, he came out of jail on a temporary basis. And after that, only this video started making rounds. But the optics of this video, it through surely suggests that, surely highlight the fault line within this system, showing about how the system works in favor of those who are intending to, make it through. This case unfolded in mid of 2024, where this individual, of course, was involved in an accident or a hit and run case, which resulted in the death of two techies in Pune city. And after that, we know that the case made it to national headlines after the, after the very interesting kind of verdict or observation that was made by the juvenile court back then, as the accused was under the age of 18. But what came forward, in the investigation later on, was the fact that the family was also involved in saving this particular individual from this grave. In fact, his mother, and his father were also closely linked to this case, as a result of which some of them were either absconding, and the father, of course, as we know, was in jail for quite some time. And after he's been out on bail since last 1 week, we are seeing that this video has been making rounds, what seems to be a celebratory video where there are other members of the family and, there are other family and friends involved in that video as well. It will be important and interesting.
1: Well, Anuj, hold that thought. We have Om Awadhya, the father of the victim of that Porsche case that took place exactly 2 years ago on the 19th of May. We have the father speaking with us. Thank you so much, sir. NDTV pe hamare saath baat karne ke liye. Aapka reaction jab aap dekhte hain ki jo accused ki family hai, wo kaise celebrate kar rahi hai jab wo apne unko bail mili hai, wo ghar ja sake hai. Ye case aapko lagta hai aapko justice mila hai yahan par, aur jaise family बाहर आके सेलिब्रेट कर रही है, कोई रिमोर्स नहीं है कि दो लोगों की हत्या हो गई थी उस इंसिडेंट में?
3: जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
3: मैडम ये बोल रहा हूँ कि ये तो बड़े लोगों का खेल है मैडम, ये तो बड़े लोग करते हैं, कोई वो नहीं है। ये इतने बड़े पूंजीपति हैं मैडम कि जो दो होनहार बालकों के हत्या करने के बाद ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कर सकते मैडम, उनके पास बहुत पैसे है, करोड़पति है, अरबपति है। ये तो न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठता है मैम।
1: बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला इस केस में, लेकिन जब
3: नहीं मैम नहीं कुछ
1: जब ये केस हुआ भी था तब भी बहुत सारा अप्रोर हुआ था। इस ये जो केस है, बड़े सारे लोगों ने आके एक्सपोज करा था जो सिस्टम का फेलियर है, जो करप्शन है, वो बहुत सारी बातें बाहर आई थी, क्योंकि फैमिली ने बड़ा कवर अप करने की कोशिश की थी। अगर आप डिटेल्स देंगे, आपको इस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई है?
3: मैडम इसमें तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुई मैडम। क्या है कि ये पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ना उठा होता तो आज हम लोग कुछ ना होता। ये पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरा उठा है, आप लोग के तरफ से पूरा उठा हुआ है, इसलिए जाके ये लोग सब पकड़ाए हैं। नहीं थी इसमें कभी ऐसे होते नहीं, ये लोग तो दो दिन पहले ही मैनेज कर लिए थे पूरा, करोड़ों रुपए बांट करके डॉक्टरों को खरीदना, ये मजिस्ट्रेटों को खरीदना, जो जे जे बोर्ड के हैं उन सबको, ये सब पूरा खरीद चुके थे मैडम, पूरा मैनेज करके रखे थे।
1: ब्लड सैंपल ही क्यों ना हो जो मदर के ब्लड सैंपल के साथ उन्होंने चेंज कर दिया था, ऐसी ऐसी बातें जो बाहर आई थी उस वक्त।
3: ये बताइए मैडम, इन्होंने क्या था, जब गवर्नमेंट थी बीजेपी या जिसकी भी गवर्नमेंट थी उसका विधायक जाके इनका पीजा लेके जाता है, और जो विधायक ने अनसुनता किया था, इसके जो आपका टावरे जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के लिए उन्होंने अनुशंसा की थी उसको नियुक्त करने के लिए, ससून हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनको इन्होंने नियुक्त करवाया था, विधायक नियुक्त करवाया था, और विधायक जो है ये सुनील टिंगरे जी जो थे, इन्होंने ही विशाल अग्रवाल के यहाँ काम करते थे, और इन्होंने पूरा मैनेज किया मैडम। उस दिन जब ये रात को 4-5-6 बजे सुबह पहुंचे हैं उधर थाने पे, पूरा इन्होंने मैनेज किया है, हर तरह से पूरा मैनेज गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है मैडम, विधायक की तरफ से हुआ है। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे मैडम, हम लोग तो सिर्फ जब मीडियम के माध्यम से आता है वही हम लोग देख के बता सकते हैं मैडम, बस उसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें तो लगता है सर पूरा सिस्टम उधर बिका हुआ है,
1: बिल्कुल
3: पूरा का पूरा सिस्टम। मैडम देखिए मैडम, बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, बीजेपी गवर्नमेंट

0: Welcome back. The Supreme Court today has upheld the Election Commission's power to conduct a special intensive revision of electoral rolls, stating the process is vital for free and fair elections. The top court ruled that the SIR exercise is constitutionally compliant, even if it initially appears exclusionary. A bench headed by the Chief Justice, Suryakant, confirmed that the poll panel acted within its statutory powers. The court emphasized that free and fair polls depend on the integrity and accuracy of electoral rolls. Congress has questioned the judgment and stated that we have already had the Election Commission conduct SIR in the past, but the process used to be different, unlike the current situation involving CEC Gyanesh Kumar. Meanwhile, the BJP slammed the opposition for questioning the validity of SIR.
1: जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है, और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है, उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है, और SIR बिल्कुल आवश्यक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
0: All right, with that, time for us to slip into a short break. News updates continue right here on NDTV. Do stay tuned.

0: the seats secured with the support of the DMK voters.
1: Right. Thank you, Sam Daniel, for joining us. That is TVK Chief Minister Vijay of Tamil Nadu, who has arrived in New Delhi. And remember that, you know, this is his first visit as the Chief Minister of Tamil Nadu, and he's likely to meet the Prime Minister at 4:30 p.m. today. Also, the Home Minister and the Finance Minister today evening. But while there is the Chief Minister of Tamil Nadu in Delhi meeting the central leaders and the Prime Minister, and also striking a note of cordial relations, center-state relations, what we see here at Kaveri, the official residence of Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah, is also an ease sense of calm. Important meetings are going on inside. He is surrounded by his confidants and allies, and this is just hours before you know, he's expected to also give in his resignation. Remember, it was only yesterday that the Congress leadership made it very clear that this is time for reorientation of the Congress party in the state of Karnataka. Karnataka is all set to face assembly elections in 2028. Rahul Gandhi, the LOP and Congress leader, has personally spoken to Siddaramaiah, and he has told him that it is in his interest and in the party's interest that Siddaramaiah cooperates with the party's decision and also looks at a larger national role for him. He's called him one of the most important OBC leaders that the party has. But yes, Siddaramaiah will also negotiate. What we are told from our sources is that while the negotiations on who the chief minister is going to be, well, it is expected to be DK Shivakumar. There's also a power play that's happening with regard to who the deputy chief ministers will be, because both Siddaramaiah and DK Shivakumar want to have a little bit of say on that. The high command is very insistent that it wants complete dominance on who it wants to see as the next Chief Minister of Karnataka. It also wants to have complete say on the nature of the cabinet that will be put in place in a few days from here on. While the BJP now has gone completely all guns blazing on the Congress party, saying that the Congress party is all set to remove its OBC leader from the post of the Chief Minister, and that's a sign that the Congress party is anti-OBC. That's the big statement that's come from BJP leaders as well. In fact, BJP MP and former Chief Minister of Karnataka, Basavaraj Bommai, has reacted to the developments in the state, saying that this is a signal to show that the Congress party does not understand OBC sentiments and aspirations. Meanwhile, DK Shivakumar is in Delhi. He's all set to come to Bengaluru tomorrow. Randeep Surjewala, the observer for the Congress party, the in charge for the state of Karnataka, is also on his way. A lot of announcements, decisions are expected tomorrow, even as the Congress High Command is that tightrope when it comes to balancing aspirations of communities and also of its own two most important leaders of the Congress unit, DK Shivakumar and Siddaramaiah. Let's take a look at some actions.
2: The problem originated from the day one when Siddaramaiah was chosen as a chief minister. There was an infighting then also. And it was not a smooth, unanimous selection of the chief minister. There was a lot of conditionalities put. And the whole 3 years, they have been talking about sharing of power, changing of power. They have totally neglected the administration and people of Karnataka. They have been neglecting throughout. That's why Karnataka has suffered. Now, this marathon meeting shows that everything is not well within the ruling party in Karnataka here.
3: कब तक चलेगा कुर्सी झगड़ा वो बंद करो जनता ने आपको पावर में बिठाया झगड़ा करने के लिए नहीं है जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पावर में बिठाया है आप क्या कर रहा है झगड़ा कर रहा है जनता का कष्ट को सुनने वाला कौन है ही नहीं विधानसभा में कोई है ही क्या कोई मंत्री है ही नहीं सब लोग दिल्ली में है दिल्ली आपको पावर दिया नहीं कर्नाटक की जनता आपको पावर दिया है आपको सत्ता में बिठाया जनता ने आप जनता को छोड़ करके दिल्ली में गया है वही जनता आपको पावर से हटा देंगे कौन आपको सत्ता में बिठाया वो लोग सत्ता के खींचने का ताकत भी जनता के पास है किसके वजह से सत्ता में बिठाया आपने कहा कर्नाटक का सरकार में 40% करप्शन है हम लोग बिना करप्शन काम करेंगे क्या किया पावर में आने के बाद 60% तक पहुंच गया, बढ़ाया करप्शन को।
4: अधिकार हंचिक किताट दल इडी सरकार रीति कोम स्टेज को आड़ पूर्ति कुस्त बिंदे परमेश्वर ईर जग्री आड़ कुसित अंत मत कुसद बिंदे वो वर्ष आगो आड़ यार मुख्यमंत्री यारगू गार यार हर यक्ष प्रश्ने दिन पत्रिकली क्वेश्चन मार्के चानलू क्वेश्चन मार्क इतार होता वर्ष मुन्ूर अरवत दिन कन सुस्तार कांग्रेस पार्टी हईकमांड वीक हईकमांड वीक तीर्मान तेजी विफल आगे अधिकारी आड़े आट
5: राजीनामे यारे मुख्यमंत्री आरू कात्कालिक अवधि पूर्व चुनाव कर्नाटक राज्य बंधन यारू कड़े साध्य मतमे हेल्ता सिद्दरामय्य राजीनामे यारे मुख्यमंत्री आरू सह राज्य आड़ रीति गोंद आगे नोड़ अवधि पूर्व चुनाव राज्य बंदे बरतने
6: कांग्रेस की प्रॉब्लम ये हुई है कि कांग्रेस के यहाँ जो है वो एक अनार सौ बीमार है। अब जो है वो उस एक अनार सौ बीमार को जो है हर बीमार को जो है वो संतुष्ट करने के लिए रोटेशन का चीफ मिनिस्टर बनाने में लगे हुए हैं। जनता ने जो है वो जनादेश रोटेशन के चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं दी थी, बल्कि एक परफेक्ट और एक मजबूत सरकार चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस वाली सरकार चलाने के लिए दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि जो आने वाला अगला चुनाव है कर्नाटक का, उसमें जो है वो इनकी इनको जनता जनादेश देने वाली है नहीं। इसीलिए अभी से जो है वो रोटेशन का में जो है वो दो दो महीने चार चार महीने जो है वो सबको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं।
1: Well, Karnataka has this unique distinction of being a state that is also politically influenced by seers and religious institutions that are headed by saints and seers who belong to different communities. This is a state that has the rich religious social tradition of Basavanna, who was seen as a social reformer. So social reform is also intertwined with religious reform in this state, which is why what seers speak in Karnataka also has a lot of political importance. I'm saying all this because a group of seers was present at Delhi's Karnataka Bhavan today, and these are saints and seers, religious heads of Wokaliga Mats, and they came specifically to Delhi to congratulate the high command on this decision of the transition that's expected to be put in place from tomorrow, and they are all supporters of DK Shivakumar, who also comes from the same community. My colleague Jainendra spoke to a few of them at Karnataka Bhavan, Karnataka House in New Delhi, and this is what they said.
7: Not only one face in OBC leader, Siddaramaiah is also a leader. Why not to become the OBC leader of DK Shivakumar in Karnataka? Because he is also dedicated the party. Last 8 times he is in MLA. 8 times, not only he is very.
8: Saying DK Shivakumar is also OBC leader.
7: No. See, OBC ka janma.
9: पैमानों पर नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, लोगों का आना हुआ, परंतु उसके बाद भी यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है, और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन, जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड आई वुड लाइक टू आस्क, ये लोग क्या आपको कोई मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं? गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन लगातार बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी जी कहां थे बंगाल में? चलिए, आप कह सकते हैं कि बंगाल में हम बहुत मेन क्लेमेंट नहीं थे, तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे। कितने दिन रहे विपक्ष में वहां असम में जाकर? उसकी बजाय कहीं कार निकोबार में घूम रहे थे, कहीं वियतनाम में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं यह बात नैतिक और राजनीतिक आधार पर। हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इसके अतिरिक्त अमित शाह जी, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों की आपने वो बैठकें देखी होंगी, वो सम्मेलन देखे होंगे, जो शक्ति केंद्र और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आपने देखे, मंडल अध्यक्ष स्तर लोगों के कार्यक्रम देखे, कांग्रेस में कितनी बार आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन देखे, कितनी बार मंडल अध्यक्ष के सम्मेलन देखे, अर्थात काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा। मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है, और इसका एक और खतरनाक अर्थ भी है। यह विषय सिर्फ यह नहीं है कि SIR पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। तो मैं सिर्फ अंत में, कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था, बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया, आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया जिन्होंने बिहार के DNA के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद।
10: कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे?
9: मैंने तो यह प्रश्न सामने रखा है, आपने कितनी बार उनको जिला अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के, बूथ केंद्रों के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हुए देखा है, और तो और अपने ही वर्कर्स पे आरोप लगाते हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी अहमदाबाद गए तो कहते हैं गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ और एक कांग्रेस जो बीजेपी के साथ। मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं का भी ऐसा अपमान करने के बाद कोई सोचे। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल करना चाहता हूं, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप कई राज्यों में सरकार में भी हैं, और तीन राज्यों में तो आपकी अपने दम पे सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक, जहां तेलंगाना और कर्नाटक तो समृद्ध राज्य हैं। आप मॉडल दीजिए ना, गवर्नेंस का मॉडल दीजिए। हम जब विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस का मॉडल दिया था, तमाम सरकारी जो इंडिकेटर्स थे उसमें उस समय की सरकार उसको स्वीकार करती थी, टॉप रैंकिंग्स में आते थे। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं लगातार गुजरात को टॉप रैंकिंग स्टेट्स में देती थी। अब हमने मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को फूड ग्रेन पूल्स में सबसे ऊपर तक पहुंचाया था, मध्य प्रदेश में ये लाडली लक्ष्मी योजना उसी जमाने में आई थी, शिवराज जी को मामू कहना उस जमाने में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, इवन जब कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होता था, वो एक मॉडल था। तो मैं कह रहा हूं आपका मॉडल क्या है? विपक्ष में कोई मॉडल नहीं, मॉडल यह है कि हर राज्य में दो धड़े हैं कांग्रेस में, और धुम धुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे कि पहले मुझे मिल जाए कि मुझे मिल जाए। आज जो लोग सवाल पूछते थे, मुझे लगता है उन्हें आंखें खोल के देखना चाहिए कि बंगाल में हाकिमपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से लाइन लगी हुई है वापस जाने के लिए, और अनेक लोग उसमें स्वीकार भी कर रहे हैं कि वोट वोट डाल भी चुके हैं पिछले चुनावों में। इससे पहले भी जब ये विषय आया था तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऑन कैमरा मतलब इस बात को स्वीकार किया कि चार चार बार वोट डाल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा वोट के लालच में और घुसपैठियों के लालच में कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए था। एक पुरानी उर्दू की कहावत होती है, कम खाए गम खाए, ना हकीम का जाए ना हाकिम का जाए। हाकिम का मतलब आप समझते हैं, ऑफिसर पुलिस वाला, और हकीम मतलब डॉक्टर। तो कम खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, गम खाओगे तो लड़ाई नहीं होगी तो पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हाकिमपुरा से उन्हें यह संदेश लेना चाहिए था कि अगर उन्होंने वोट का लालच थोड़ा कम खाया होता तो यह हाकिमपुरा का जो मुकाम है वो नहीं दिखाई पड़ रहा होता। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही वो अक्षरशः सत्य थी। फिर भी किसी को शक व शुभ हो तो बांग्लादेश का एक सांसद तक बोल चुका था कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो बहुत से लोग वापस आने लगेंगे। अब वापस आने के बाद भी किसी को ना समझ में आए तो मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में द डेली स्टार जो कि बांग्लादेश का अखबार है, उसमें कांग्रेस के नेता अखबार में आर्टिकल लिख रहे थे कि मोदी हैज टू गो। तो मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा था कि मोदी हैज टू गो? ये बांग्लादेश में संदेश क्यों दिया जा रहा था? और वो संदेश का प्रभाव देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है कि असम का धुबरी क्षेत्र मिनी बांग्लादेश है, और उस तथा कथित मिनी बांग्लादेश, जो मैं नहीं कह रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री,
11: बीजेपी देयर रिएक्टिंग टू द बिग न्यूज टुडे, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द इलेक्शन कमीशन पावर टू कंडक्ट द SIR। रिमेंबर दिस हैड बीन चैलेंज्ड बाय सेवरल पार्टीज एंड एज वेल एज NGOs एंड हैड चैलेंज्ड द SIR दैट हैड टेकन प्लेस, द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। रिमेंबर इट वॉज फर्स्ट अंडरटेकन बिफोर द बिहार इलेक्शंस एंड देन ऑफकोर्स इन वेस्ट बंगाल। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रूलिंग that the SIR exercise is constitutionally compliant. Well, let's go across to Prashant for more on this. And Prashant, the BJP there hitting out at the Congress and specifically at Rahul Gandhi for ever questioning the SIR process. It's been very, very contentious. But today, the Supreme Court ruling coming in.
12: Yes, Supreme Court's judgment seems to have validated what BJP has been saying all along, all the BJP leaders, including Home Minister Amit Shah. That is why you have seen Sudhanshu Trivedi hitting out at Rahul Gandhi, because it was Rahul Gandhi who first raised the question and then all the opposition parties followed. Not only BJP, all the alliance partners of the BJP have also hit out at the opposition parties. JDU has said that now, since the Bihar was the first state where SIR exercise was undertaken, JDU has also targeted Rahul Gandhi and the entire opposition, saying that now the Supreme Court has validated what happened in Bihar, they should stop raising questions on the elections that took place in Bihar and the result in which NDA emerged victorious. So now the entire BJP and its allies have hit out at the opposition. Opposition on its part, I've heard Congress leader Pramod Tiwari saying that they were never against SIR, but they are still against the way it was conducted, and the entire process is under question. So that is their defense. But yes, right, the politics has been played out after the SC verdict.
11: That's right. Opposition has contended it's the manner in which SIR was carried out. It has been carried out twice before in the country as well. Thanks so much, Prashant, for joining us with all those details. We'll continue to track this story and get you more reactions. For the moment, slipping into a short break. Stay with us.

0: Well, definitely, Kakoli Ghosh Doshida, TMC MP, she quits from all political posts of her party. Remember, Kakoli Ghosh Doshida used to hold the president, post of the TMC's woman cell. But in the letter which she has wrote to party's Subrata Bakshi, her top leadership, in that letter, she has come down heavily against several acts of the Trinamool Congress Party, mentioning episodes of RJ Kaur horror, or even the woman MP raised a serious allegation. The way the male MPs treated woman MP, she also flagged it off during this resignation letter. She's decided to keep distance from the party at this point in time, and also said that she is not leaving party at this point in time, but resigning from all posts that she used to holding inside Trinamool Congress Party. Back to you.
1: Ritik, thank you for getting us the latest on this breaking news that she has resigned from all party positions within the TMC. Moving on to more news coming in, and this is the Supreme Court that's upheld the Election Commission's power to conduct a SIR, the Special Intensive Revision of Electoral Rules, stating the process is vital as far as a free and fair election is concerned. A batch of petitions had challenged the legality as far as the SIR exercise is concerned that was first undertaken by the ECI, the Election Commission of India, in Bihar in June of last year, 2025. The top court ruled that the SIR exercise is constitutionally compliant and that a bench headed by the Chief Justice of India, Surya Kant, has confirmed that the poll panel acted within its powers. These are the powers that the court has emphasized that free and fair polls depend on the integrity, on the accuracy as far as electoral rolls are concerned. And the Congress questioned that very judgment, saying that the current procedure to conduct that exercise was different to what was used in the past by the Election Commission. Meanwhile, the BJP slammed the opposition for questioning that validity as far as the SIR exercise is concerned and hailed the top court's decision as well. Let's get you the political reactions coming about.
2: जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है, और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है, उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूप के अनुरूप है, और SIR बिल्कुल आवश्यक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
3: जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
4: मुद्दा ये नहीं कि SIR इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवाई चुके हैं SIR, लेकिन SIR होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल यह, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6,000 लोग तो उनमें बैलेट मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो बैलेट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा।
5: देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलता है ना, आर्टिकल 324 से लेकर 326 के बीच में इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकार लिखे हुए संविधान में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुछ हैं संविधान ज्ञाता, संविधान विद्य, जो अपनी बुद्धि को संविधान से ज़्यादा मानते हैं। ऐसे ही लोग SIR के खिलाफ थे, राहुल गांधी जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, TMC, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग हैं अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। समस्या ये नहीं है कि विरोध करना है, समस्या ये है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में।
6: एसआईआर की प्रक्रिया जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लगातार जो है वो आजाद भारत के आजादी के बाद से लगातार चलती रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर के इस पर जो है वो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, वो जो है वो देश हित में नहीं है। एसआईआर में जो है वो जो वैध मतदाता है या जो वैध नागरिक हैं उनकी सुरक्षा है, और जो अवैध मतदाता या अवैध नागरिक है उनकी समीक्षा है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसको लेकर के जो कुछ लोगों का ये एक हिस्ट्री शीटर बन गए हैं कि कैसे जो है वो देश में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करो।
7: अंडर आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम टू टेक केयर ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, एंड हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी। In that context, from at regular intervals, the Honorable Election Commission has these special intensive drives in terms of correcting the voter list. And every political party has a stake to ensure that elections are free and fair and the voter list is absolutely pure. Only bona fide voters are there. This is what the scheme of things is, and that's what the Honorable Supreme Court has held. So I think it should close the doors on those who are raising unnecessary questions against the Honorable Election Commission.
8: Judgment hua hai. एसआईआर के लिए ये बिहार का मैटर के लिए, बिहार का जो एसआईआर को चैलेंज किया था उनमें ये जजमेंट हुआ है, उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्योर को ठीक से किया है। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात बोला है, जे जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है।
5: चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है तो डिटेल देखते हैं, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं।
1: Those are the political reactions coming in. But earlier, last year, in 2025, the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, spoke about the SIR exercise. Let's listen in to what he had to say.
9: राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ हां है और रहेगा।
1: Switching tracks now, the Agarwal family accused in the controversial Pune Porsche car accident has once again faced scrutiny. This is after a video of them celebrating has gone completely viral. The video shows the father of the minor accused in the case celebrating at a lavish party with his wife, his son, while wearing a garland of currency notes. This comes about close on the heels after he was granted bail. This controversy follows the May 2024 accident in Pune where the minor's son drove his Porsche under the influence of alcohol and crushed two IT engineers to death. Post the accident, the Juvenile Justice Board granted bail to the accused on the condition that he would write a 300-word essay on road safety. The family in the case was also accused of evidence tampering, this including blood samples that were swapped with the mother of the accused. Let's just also get your reactions of what the family members are saying.
10: के माध्यम से ही पता चला है कि दोषियों की जमानत के बाद इन्होंने पार्टियां मना रहे हैं। सोशल मीडिया में देखने में आया है कि इनकी मतलब नोटों के माला पहन करके ये लोग पार्टियां मना रहे थे। हम ये चाहेंगे कि न्यायपालिका जो है इनकी, सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने जमानत दिया है वो उनकी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इनकी जमानत रद्द करे ताकि समाज के बीच में मैसेज सही जाए। ये लोगों के लिए ऐसे ही करना चाहिए।
11: अभी आप क्या चाहते हैं?

0: अब हम यही चाहते हैं कि कम से कम न्यायपालिका जो है इसमें संज्ञान लेकर के इनकी जमानत रद्द करे और कम से कम ऐसा नियम कानून बनाए ताकि ये दोनों जो होनहार बच्चे गए हैं तो दूसरा कोई मतलब ऐसा केस दोबारा ना हो पाए और कोई भी बड़ा आदमी ऐसा नकृत ना कर सके।
1: गुस्सा आ रही है ये देख के कि आज जो जो मेरे बच्चों को मेरे बेटे को जिसने मारा उसके आज उसके पिता ने इतना घिनौना काम किया है उसके बेटे ने और आज उसको जमानत के बाद वो इतना खुश पार्टी मना रहा है, दो लोगों की जान लेके पार्टी मना रहा है, वो भी नोटों की माला पहन के। लोगों के बीच में ये गलत मैसेज जा रहा है इस बीच से कि पैसे के आगे वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया को खरीद सकता है, इसलिए वो पैसा दिखा रहा है सबको। और लोगों को क्या ही लगेगा इसमें कि आम पब्लिक के लिए कानून कुछ भी नहीं है क्या? कानून मतलब केवल पैसे वालों के लिए है कि पैसे फेंको और कानून को खरीदो और कुछ भी नहीं है। आम पब्लिक ये सोचती कानून हमारे साथ है, हमको न्याय मिलेगी। आज 2 साल हो गए मेरे बेटे को गए हुए, आज भी हमें न्याय नहीं मिला।
2: And with that, we're slipping into a very short break. We just heard family members how they're reacting to the party of those who were responsible for what happened back in 2024, where two IT professionals lost their lives. We're coming back with a whole lot more on the other side. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
5: सबका राजा आकर मसाला।
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद।

0: top court ruled that the SIR exercise is constitutionally compliant. A bench headed by the Chief Justice Suryakant confirmed that the poll panel acted within its statutory powers. The court also emphasized that free and fair polls depend on the integrity and accuracy of electoral rolls. The Congress questioned the judgment, saying that the current procedure to conduct SIR was different to what was used in the past by the Election Commission, and that they had questioned the manner in which the special intensive revision of electoral rolls was carried out. Meanwhile, the BJP slammed the opposition and especially the Congress and Rahul Gandhi for questioning the validity of the SIR and also hailed the top court's decision.
1: जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है, और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है, उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूप के अनुरूप है, और SIR बिल्कुल आवश्यक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
2: मुद्दा ये नहीं कि SIR इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवा ही चुके हैं SIR, लेकिन SIR होता था 4 साल, ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने 5 महीने 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में बंगाल में उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6,000 लोग तो उनमें बैलेट मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो बैलेट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा।
3: देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलता है ना, आर्टिकल 324 से लेकर 326 के बीच में इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकार लिखे हुए हैं संविधान में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुछ हैं संविधान ज्ञाता, संविधान विद्य, जो अपनी बुद्धि को संविधान से ज़्यादा मानते हैं। ऐसे ही लोग SIR के खिलाफ थे, राहुल गांधी जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, TMC, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग हैं अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। समस्या ये नहीं है कि विरोध करना है, समस्या ये है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में।
0: Now, earlier in 2025, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar had spoken on the SIR. Listen in to what he said.
4: राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
0: All right, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा आतुर मसाला।
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।

0: Awadhia, who are the parents of young Anish Awadhia, one of the victims of Vedant Agarwal in that speeding Porsche. Savita aur Om ji, mujhse baat karne ke liye, NDTV par aane ke liye, shukriya, dhanyavad. Mujhe ye video dekh ke, main explain nahi kar sakta hoon ki mere man mein kya aaya. Main TV pe nahi bol sakta ki mere man mein kya aaya, Savita aur Om ji. लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, ये कहानी सबको पता है कि कैसे हुआ है दो साल में, लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, सविता जी, मैं आपसे पहले ये सवाल करूँगा, ये उस टाइम हुआ जब एक सेलिब्रेशन हो रहा था अग्रवाल परिवार में, बाप जो है विशाल अग्रवाल, उनको बेल मिल गया था मार्च में, और ये लोग पार्टी कर रहे थे, एक नोट माला लगा कर नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये पूरा वीडियो सामने आया है। सविता जी, आपके मन में क्या आया?
1: ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं सर कि हम पैसे के बल पर दुनिया को खरीद सकते हैं, कानून हमारे जेब में है, पैसा दिखा रहे हैं अपना और ताली बजा के जश्न मना रहे हैं कि हमारे बेटे ने दो लोगों की जान ली, दो लोगों को कुचला, इसके बाद भी हम आज सरेआम ऐसे रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये दो बच्चों की जान लेके भी आज इतने खुशियां मना रहे हैं वो उनकी बेल पे, इनको शर्म आनी चाहिए ये चीज सोच के कि, और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो वहाँ के नगर क्या बोल रहे हैं उसको, जो यहाँ की न्यायपालिका है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बेल दिया है उनको, उनकी तो बेल रद्द करनी चाहिए, इनका जमानत रद्द करनी चाहिए सर इनको। इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, लोगों के सामने ये दिखा रहे हैं कि पैसा का पावर बहुत है, हमारे आगे कानून की कोई वैल्यू नहीं है।
0: ओम जी, मैं आपसे ये सेम सवाल करूंगा, आपके मन में क्या आया जब आपने ये वीडियो देखा? दो साल में कोई भी जस्टिस नहीं आया है अनीश और अश्विनी के लिए, लेकिन जब आपने ये वीडियो देखा, आपका रिएक्शन क्या था? ओम जी,
2: सर हमें तो ये लगता है ये इतने बड़े रईस लोग हैं, दो बच्चों की जान लेने के बाद ऐसी पार्टी करना, एक तो बहुत अपने आप में समाज में शर्मसार करने वाली बात है सर, कोई मामूली चीज नहीं है, आपने दो बच्चों की हत्या करवाई है, आप ही के कहने से पूरे गाड़ी के पेपर सब गाड़ी वगैरह उसको दिया गया, बच्चे को चढ़ाया गया, और उसके बाद ऐसी पार्टी आप कर रहे हैं। ये बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बिल दिया है, इसलिए बिल दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप इस तरह करें, कल के लिए तो आप घर में घुस के हम लोग को मार भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं लोग, इनके लिए शर्म करना चाहिए, चुल्लू पाएंगे। आज ये पार्टी मना रहे, दो बच्चे हमारे बच्चे गए हैं, जो बच्चे गए उनके घर वाले बता रहे किस तरह से हो रहा है, ये बहुत घिनौना काम है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी पीड़ा बहुत बढ़ा दी है इन्होंने। हम तो सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करेंगे इनकी जमानत रद्द की जाए, इन्हें फिर से अंदर किया जाए, और जो आपके मुख्यमंत्री जी ने, सिंधे जी ने बोला था फास्ट ट्रैक में कोर्ट चल रही, इसको दो चार दिन के अंदर निर्णय दे दिया जाए, तब तो हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा, तब तो उनको न्याय होगा। समाज के बीच मैसेज सही जाना चाहिए सर, इससे मैसेज सही नहीं आ रहा है, इससे यही जा रहा है कि बड़े आदमी हो, बड़े बड़े वकील लगा लो, अपने बच के रहे और पेशी पेशी दिलवाते रहो, जो मरता है उसको मरने दो।
0: सविता रोम जी, मैं एक आपको एक अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि अग्रवाल परिवार मीडिया के कवरेज देखकर काफ़ी हैरान हो गए हैं, शायद दुनिया ज़िंदगी में पहली बार उनको हैरानी महसूस हो रही है, और उन्होंने एक अपडेट लिखा है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। उनका कहना है, विशाल अग्रवाल इज़ इशूड एन ऑफिशियल प्रेस नोट रिगार्डिंग अ वायरल वीडियो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, denies jail release celebration claims. Agarwal refuted media claims that the video shows him celebrating his release from jail, calling the allegations false and defamatory. ये basically बोल रहे हैं सविता और ओम जी कि ये वीडियो सही है, लेकिन ये बेल मिलने का जश्न नहीं है, ये बेल मिलने का सेलिब्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक पार्टी चल रहा है, लेकिन ये बेल मिलने का सेलिब्रेशन नहीं है। क्या आपके मन में कुछ बदलता है ये क्लैरिफिकेशन सुनकर ओम जी?
2: जी नहीं सर, कुछ नहीं, ये बिल्कुल नहीं, सेलिब्रेशन उसी का है सर।
1: ये किस चीज के लिए इतना सेलिब्रेशन हो रहा है सर?
2: दुनिया को दिखा रहे हैं सर
1: की मान पहनेंगे, और इसके बाद इतना जो गाने बज रहे हैं कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, ये किस चीज के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है?

0: है। आज आपने थोड़ा तो गिल्ट कम से कम अपने मन में रखिए, थोड़ा तो कम से कम अपने मन में ये सोचिए कि किसी दो बच्चों की जान लिया है आपने, किसी का लाल, किसी के घर से घर का चिराग आपने बुझवाया है। कम से कम थोड़ा तो ये सोच लीजिए, थोड़ा तो अपने मन में। हमारा दुख तो इतना था, किस तरह से हम लोग जी रहे हैं सर, बस उसको याद करते हैं किस तरह से हमारे दिन बीतते हैं, ये सोच के आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा बच्चों को, न्याय मिलेगा बच्चों को। लेकिन अभी तक हमको कोई है हमारा हमको, और ये वीडियो देख के तो हमको बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है इस चीज का कि आज हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं है कि हमारा थोड़ा भी हमारे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए किया जाए, इसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है आगे।
1: सर, इस वीडियो को देख करके यही समझ में आता है कि न्यायपालिका जो है कहीं अब सही सही रही नहीं है। सब जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बड़े लोग वहाँ न्याय को चाहे तो खरीद सकते हैं, बड़े पूंजीपति हैं, सब खरीदा जा सकता है न्याय। हर जगह यही देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया सब जगह यही समझ में आ रहा है, न्याय बिक रहा है। और हकीकत में भी यही है, बड़े बड़े वकील लगा लो तो आपको न्याय मिल जाएगा। यही हाल इधर भी हो रहा है सर। हम लोग को उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से इसीलिए मांग कर रहे हैं
2: सविता
1: कम से कम उसे झुकें।
2: जी, सविता रोम जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। ये मई 2026 में का हादसा था पुणे में, जब वेदांत अग्रवाल जो इस वीडियो में है, तब वो नाबालिग थे, अब वो अडल्ट हैं, और 2024 में हुआ था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पोश का इंसिडेंट था। उसके बाद जब वो अरेस्ट हुए थे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, उनको बिल्कुल तुरंत बेल मिल गया था, और एक कंडीशन था कि वो एक 300 वर्ड का एक एसे लिखे रोड सेफ्टी के ऊपर, और इसलिए ये स्टोरी काफ़ी बड़ा हो गया था। और मैंने लगातार इसको कवर करके आ रहा हूँ। उसके बाद उनके माँ बाप भी जेल के अंदर चले गए थे, क्योंकि ये फैक्ट सामने आया था कि वो जो ब्लड सैंपल था, जो ड्राइवर था वेदांत, उसका ब्लड सैंपल स्विच हुआ था, कुछ रिश्वत दिया गया था सैसून हॉस्पिटल में, तो उसका जो अल्कोहलिक ब्लड था वो स्विच हो गया था ताकि वो रिलीज़ हो जाए या उसके ऊपर कार्रवाई कम हो। यही पेरेंट्स जो हैं सविता जी और ओम जी, उनको बेल मिल गया है। ये प्रूफ सामने आया है, ये बिल्कुल प्रूफ सामने आया है कि आपके बच्चे की मौत के बाद उन्होंने डेलिबरेटली कोशिश की इस इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की।
0: जी
2: वो
1: सर, इन्होंने तो न्यायपालिका का मजाक बनाया।
2: आपके मन में कोई होप अभी भी है जस्टिस के लिए, सविता जी, ये सब वीडियोस देख के? जी, ये बिल्कुल सही है कि अब परिवार क्लैरिफाई कर रहा है कि ये बेल को लेकर सेलिब्रेशन नहीं है, बेल को लेकर जश्न नहीं है, और ये मीडिया फैक्ट्स ट्विस्ट कर रहा है, ये डेफामेटरी इन्फॉर्मेशन है। क्या आपके आप अनीश की माँ हैं सविता जी, आपके मन में कुछ बदलता है क्या?
0: जी नहीं सर, ये सब केवल ये जब सोशल मीडिया पे ज्यादा वीडियो चलने लगते हैं तो अग्रवाल ने अब ये सीधा तरीका निकाल लिया कि ये कहने के लिए कि ये सेलिब्रेशन किसी और चीज का है। ये ऐसे कैसे लोग कैसे मानेंगे कि सेलिब्रेशन किसी और चीज का है? अभी तक आप जब कोर्ट जेल में थे तब ये सेलिब्रेशन की वीडियो तो नहीं आए हैं किसी चीज के, आज आप जेल से छूटे और आपके सेलिब्रेशन की वीडियो आने लगे, किस चीज का? ऐसा आप कहीं से जंग जीत के आए क्या, या कि कहीं से चुनाव जीत के आए तो आपके गले में नोटों की माला पहना के और सेलिब्रेशन किया जा रहा है?
1: सर, इसमें एक चीज ये बोलना था कि इसमें कम से कम एक समाज में ऐसा मैसेज जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को गाइडलाइन करे इस तरह का कि जो 16 से 18 साल का अपन क्राइटेरिया मांग रहे थे बालिग का केस चलाने का, इसमें भी वही नियम बनाया जाए, क्योंकि ये एक मिसाल के रूप में है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। इस केस में क्या है, कानून का पूरी तरह मजाक उड़ाया गया है, मतलब इसमें इतना लेन देन हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इसलिए कम से कम इसको सामने रख करके कम से कम पब्लिक को ऐसा दिखाया जाए कि अपने बच्चों को जो है सही गाइडलाइन दे, सही बच्चों को सही सलाह दे, ये हम चाहेंगे सर।
2: ओम जी आप कोर्ट्स के सामने गए हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये कोर्ट केस है, ये तो चलता जाएगा, लेकिन ये जो अग्रवाल परिवार है, आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, जो लोग पुणे में रहते हैं उनको बहुत अच्छा पता है कि ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल लोग।

0: हैं, ये एक बिल्डर फैमिली के हैं, वो पुणे में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। बहुत सवाल उठते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया है, पुलिस के माध्यम से या नेता लोग जो हैं, एमएलए लोग जो हैं, कोर्ट्स की तरफ से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ होगा। अब ये लोग सब बाहर हैं, अब ये सब लोग बेल लेकर ये सब बाहर हैं। क्या आपके पास एक भी फ़ोन आया है, एक भी लेटर आया है, एक भी मैसेज आया है इस परिवार से दो साल में? सर
1: नहीं सर, किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया, जबकि इसमें इन्होंने इतना सब खेल किया, उसके बाद हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं हो, कभी कोई बात नहीं हुई थी, किस श्रद्धांजलि या कुछ भी किसी चीज के लिए इनको ये लगे कि हमसे कोई गलतियां हुई है, मतलब आज तक हम लोग से कोई नहीं, हम लोग कहिए बल्कि ये जो वीडियो दिखा के हम लोग को और जो दुख था उसको और उन्हें दिया गया है और उस दुख को फिर से ताजा कर दिया गया है।
0: आपका अगला कदम क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोर्ट्स के पास गए हैं, आपका विश्वास काफ़ी कम हो गया है कि जस्टिस मिलेगा अनीश और अश्विनी के लिए, तो आपके पास क्या क्या प्लान है आगे जाकर? सविता जी, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, आप माँ हैं, दो साल चले गए हैं इंसिडेंट के बाद, क्या आपके पास कोई प्लान है, कोई समाधान है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अब?
1: सर हम लोग यही मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है बेल रद्द की जाए, इन सबको बेल रद्द करके बच्चों को कम से कम न्याय मिले, इसलिए उसमें त्वरित तौर से मतलब जल्द से जल्द जो निर्णय हो दिया जाए, हम ये चाहेंगे ताकि उन बच्चों को आत्मा की शांति मिले।
2: मेरे बेटे को जब तक
0: सविता जी एक सीधा सवाल आपके लिए
2: जी
0: सविता जी एक सीधा सवाल आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में उस नाबालिग की माँ भी शामिल है, इसके पहले भी एक वीडियो सामने आई थी कुछ साल पहले जब वो हाथ जोड़ के भीख मांग रही थी कि उसके बच्चे को छोड़ दीजिए, आपको पता है वो सब। एक माँ होने के नाते, एक माँ की तरफ से आप क्या बोलेंगे उस नाबालिग की माँ को, क्योंकि वो भी इस वीडियो में शामिल है? सविता जी आप क्या बोलेंगे, मदर टू मदर आप क्या बोलेंगे?
2: उसको अपने बेटे की चिंता थी, उसने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मैं क्या बोलूं, मेरा तो बेटा चला गया ना मुझसे दूर, मेरे बेटे को लाके दे सकते हैं वो, मेरे बेटे को लाके दे दे मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि वो उसको अपने बच्चे की चिंता है, लेकिन ये भी तो सोचे कि जो गया है वो भी तो किसी का बच्चा है ना, आपका बच्चा तो आपके पास है, मेरा बेटा तो दो साल हो गए मैंने देखा नहीं उसको, जब वो पुणे में रहता था तो वो अगर एक महीने दो महीने भी नहीं आता था तो मैं उसको कॉल पे कॉल करती थी, बेटू आ जाया, बहुत दिन हो गए आ जा, मिलना है तेरे से, अब ऐसे टाइम निकल गया, दो साल निकल गए, एक बार भी उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, उसकी आवाज़ सुनने को तरस रही हूँ, तो जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी है उसको निकल निकल सुनती हूँ कि कम से कम उसकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़े, उसको देखने के लिए फोटो में देखती हूँ, आज वो हम जेल रहे हैं, वो टाइम जेल रहे हैं, अपने बेटे को हम फोटो में देख रहे हैं और दिल को तसल्ली कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा था जो अब नहीं है हमारे बीच में, केवल वो अग्रवाल फैमिली की वजह से और अग्रवाल के बच्चे की वजह से, आज अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता तो हम लोग भी हंसी खुशी रह रहे होते अपने परिवार में, जो हम दिन भर हमारा पूरा दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता सर कि हम रोते ना हो या हमारी आंख से आंसू ना गिरता हो, और ये वीडियो देख के तो हमारा दिल ऐसे लगता है कि आज ही की बात है और ये सारे लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, और शायद कानून भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, अगर देता होता तो वो शायद इसमें हमारा साथ देता और उन लोगों को सजा सुनाता, ना कि इनको बेल दे दे कि इनको ऐसो आराम के लिए पार्टियां मनाने के लिए छोड़ देता। और मेरी तो ये की विनती है कि इस पर जांच बैठा ली जाए और इनकी जमानत रद्द की जाए।
0: सविता जी, ओम जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए इस बहुत ही मुश्किल दौर में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि एनडीटीवी और मैं आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं, और जस्टिस लाने तक इस स्टोरी को हम जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने
1: के। मीडिया के भरोसे ही है सर, आप लोग से ही न्याय को मिलता है।
2: आप लोगों के भरोसे ही है सर, आप हम लोगों का साथ देते रहिए तभी हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। नहीं तो कानून के हिसाब से और लोगों के हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा। बस आप ही लोगों का सहारा है, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को शायद न्याय मिल जाए।
0: हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे इससे। थैंक यू,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. Sealed, hard rose. Across the country, he has dragged.

0: रिज़ाइन करेंगे, एक दिन पहले सोशो इकोनॉमिक सर्वे एक्सेप्ट होता है और सबमिट भी होता है, क्या ये पहले ही रेडी था या आज सडनली रेडी हुआ है ये बातचीत चल रही है?
1: नहीं, पहले रेडी था, उसको लेने के लिए बहुत दिन चर्चा चल रहा था, आज लिया है। कल तो सीएम साहब ने ब्रेकफास्ट के लिए सभी उनका कलीग्स बुलाया, देखें क्या उधर बातचीत होता है, क्या आपको सुझाव देंगे सलाह देंगे, उसके बाद ही आगे का राजनीतिक शुरू होता है।
0: सर, लेकिन ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो है, चीफ मिनिस्टर बहुत साल पहले भी उन्होंने बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस सर्वे जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इस बार सिर्फ एक्सेप्टेंस हो रहा है और चीफ मिनिस्टर शायद रिज़ाइन करने की भी बातचीत हो रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या होगा?
1: नहीं, सरकार करेंगे उसको, सरकार तो इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी उसका स्टडी करना जरूरी है।
0: तो कल चीफ मिनिस्टर इसके बारे में बोलेंगे?
1: जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं, इसके बारे में जरूर बोलेंगे।
0: तो क्या ब्रेकफास्ट में क्या होगा सर?
1: पता नहीं है, हम भी इंतजार में हैं, कल करेंगे।
0: सर, एक बार तो वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट सिद्धरामैया जी के घर पे, दूसरी बार नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट हुआ, अभी कल जो कैबिनेट
1: वेजिटेरियन होगा उसमें,
0: लेकिन जो न्यूज निकलेगा क्या वो सरप्राइज करेगा कर्नाटका को?
1: पता नहीं, पता हम कल तक
0: कुछ एक्सप्रेस किया है
1: उसके
0: इंतजार के साथ थे दिल्ली में, उधर कुछ बोला चीफ मिनिस्टर ने सर उनके डिसीजन?
1: हमको तो नहीं मिला, सीम से रात को डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ गए, हम आज आ गए।
0: और ये ट्रांजिशन जो हो रहा है, इफ इट हैपेंस, कौन लेगा जो चीफ मिनिस्टर की मेंटल है, क्या डिसाइडेड है
1: वो पता नहीं, कल आपको बताएंगे, 9 बजे के बाद बताएंगे, अगर सीएम जब बोलेंगे तो उसको बताएंगे ना।
2: So all eyes will be at 9 a.m. tomorrow when this breakfast meeting, the much talked about breakfast meeting, will take place. From the menu to the politics, what will happen remains the top focus here on NDTV. While in Karnataka, the Congress power struggle may have stayed behind closed doors, but the political messaging never stopped. For nearly 3 years, D.K. Shivakumar and Siddaramaiah balanced power, ambition and party unity. But while one projected authority, the other played the long game. Here's a look at how D.K. Shivakumar turned patience into political leverage.
3: For nearly 3 years, Karnataka Congress functioned with a visible dual power center. On one side, Siddaramaiah, the mass leader, seasoned administrator and dominant backward class face of the Congress in Karnataka. On the other, D.K. Shivakumar, the organizational strategist who rebuilt the Congress in the state and played a crucial role in bringing the party back to power. What began as a balancing act slowly evolved into a silent political tug of war. And through it all, D.K. Shivakumar chose patience over confrontation. While Siddaramaiah projected stability and continuity, Shivakumar focused on something else, political positioning. He rarely escalated the confrontation publicly, rarely made aggressive claims in front of cameras.
4: I don't know what did Surjewala tell me, I don't know, I'll ask him. If he asks me to come, I'll go, otherwise I'll be staying here. Whenever the party calls, we have to go, otherwise I'll not go.
3: DKS never directly challenged the chief minister. Instead, he crafted the image of a loyal party soldier, a leader willing to wait, a leader willing to sacrifice ambition for unity.
5: ತಮ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ,
6: ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ
5: ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 140 ಜನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, 140 ಜನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
3: ಅಂಡ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ರೈವಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಬಾರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಟು ಓವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, Siddaramaiah retained strong support among legislators. He remained the government's biggest mass face, and many within the party believed his political weight made any transition difficult. Congress knew how prolonged factional battles can weaken governments, drain cadre morale, and hand political ammunition to opponents. That is why increasingly the Karnataka question became less about personalities and more about damage control. And in that environment, D.K. Shivakumar's approach gave him a key advantage. For him, this was never a short sprint. It was a long political negotiation. Bureau Report, NDTV.

0: मिशन से तो हम करवा ही चुके हैं एसआईआर, लेकिन एसआईआर होता था 4 साल, ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने 5 महीने 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है।
1: इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
2: आईआर का जो मुद्दा विपक्ष ने बनाया और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे थे, इस बीच में एसआईआर पे चर्चा लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, सरकार की ओर से इलेक्शन रिफॉर्म पे जो चर्चा हुई उसमें जवाब भी आया, मुख्यतः एसआईआर पे थी।
3: सो आई सर्टेनली होप दैट विद दिस डिसीजन द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कांग्रेस पार्टीज लीडर्स will now stop attacking the election commission and stop trying to take these steps which raise unnecessary questions on democracy. If they wish to strengthen themselves, they should go among the people like Prime Minister Modi and his government does.
4: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV.
5: Hello and welcome, you're watching The Numbers Game. I'm Rahul Kamal. The West Asia crisis is now hitting home, starting right from your nearest petrol pump. After a prolonged freeze, the dam has broken, and how? We've seen a staggering 4 fuel price hikes in just the last 10 days. Since the 15th of May, petrol and diesel prices have shot up by nearly 7.5 rupees per litre, forcing petrol in Delhi past the 100 mark for the first time in 4 years. The big question, of course, is what happens next? With the vital Strait of Hormuz disrupted by the conflict, global crude remains highly volatile. If oil marketing companies continue to pass on their full under-recoveries, we are staring at a cascading impact on logistics, a sharp hike potentially in inflation, and a serious dent in India's headline GDP growth. Or can our domestic macro buffers absorb the shock? To break down what this means for your money and for the country's growth trajectory, we have

0: चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता, ये हमारा मुद्दा है।
1: इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
2: आईआर का जो मुद्दा विपक्ष ने बनाया और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे थे, इस बीच में एसआईआर पे चर्चा लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, सरकार की ओर से इलेक्शन रिफॉर्म पे जो चर्चा हुई उसमें जवाब भी आया, मुख्यतः एसआईआर पे थी।
3: सो आई सर्टेनली होप दैट विद दिस डिसीजन द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कांग्रेस पार्टीज लीडर्स will now stop attacking the election commission and stop trying to take these steps which raise unnecessary questions on democracy. If they wish to strengthen themselves, they should go among the people like Prime Minister Modi and his government does.
4: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV.
5: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
6: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
7: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
8: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
9: It's also important that how they are reshaping the industries.
10: We got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
5: Who will earn India's top business honors? Find out on 3rd July at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
11: The results with the BJP winning more than 200 seats.

0: के बाद बताएंगे, अगर सीएम जब बोलेंगे तो उसको बताएंगे ना।
1: So all eyes will be at 9 a.m. tomorrow when this breakfast meeting, the much